Rama Tripurani Tanu, Vidita Sakala Sansan, Kaushik Suno, Banda Ehman, Kutila Kala Vasali Jakula Kala, Tuma Hata Kahu Jo Chaha Ubara, Kahita Tapa Vala Rosho Hamara. Sura Samada Karani Karahi, Kahina Janava Hiya, Vidyaman Rana Paya, Kaya Karahi Pralam. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराय सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल पर